हाँ ये नालों से मंदिर का किसी अकल से इसमें काशा किसे या आज नगंगार बचा रहे हैं।